0: आशिक जरा जंग खनालाई का कोक थम रो ताबो खनालाई ने शेबोगो बरोक तलांग मने को पुला तोंगो अनिया गो मुंगी पोस्ट ने मुंग का कई एप्रेंटिस अब हंगाए पावर ग्रिड ने बेकुली तोंगो काइनीरा स्नीची रंगमारिंग ना नंगनाई डिप्लोमा आईआईटी बीई बीटेक डिग्री पास खलाइजा उमरंग ना नंगनाई बीसी नैजिदक नि बिसिंगो ऑनलाइन नि बिसिंगति कयब्लाय रना नंगनाई कयब्लाय रना नि पाइथाक सालंगा ए ताल नि सालजी सालमारि नि बिसिंगो इंटरव्यू नि साल रक ताई थाई रक ओलो कॉल लेटर नि बिसिंगति साखलाय जांनाय हनै साजाका
1: NIT ba National Institute of Technology Agartala Jirania aro kaisa buk cha achuk thai tongo obongkha aro kaisa project process development for prodigation production in bioreactor engai obo aro je renamu sognai rok borok o project tongnai ओ मार्च तालनि 2005 सिमि जेंमानि अब 2028 बिसिसरा तंनाय ते अर बरनि रंगमारि तंन नांनाय बिसिक थामनि ग्रेजुएट माइक्रोबायोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी मॉलिक्युलर बायोलॉजी अमहायके कबांग मना तंग ते पोस्ट ग्रेजुएट ख्लाइजाक रबो रवि मानो गाय परक अर काइसा बुकचाचक थाइनो ते अब इंटरव्यू नाजाकनाय आबोंखा खनानि बिसिंगनो सेप्टेम्बर तालनि दक सालमारि फुंनि दामचि तामानि जरावो फरके जेंगो जरावो तिनिनि नबर्तिबार र स्थिति छाक्लाय जागा हायनो हाय चुमै कबल जाक तंनाय ते वाते किसामिसा गरं गरं थायोक लायनाय ते छाकनि तुमारि तंनाय थामचि थाम डिग्री सेल्सियस ते चांगमारि तंनाय नैचि दग डिग्री सेल्सियस ते अमहायके हजाक तंगनि बागेब साख्लै जाखा गोरों गोरों तीब्रा हास्तेनि जुदा जुदा हांकर नर्थ अनगति दलाय गुमति साउथ डिस्ट्रिक्ट ते फेरांकगै वाते वाय माने हनि साख्लै जाखा
0: हायदिके नबर्तेबानि साख्लै मुनि यागलो ताबु खाना लायना रचामु रचामुङो खरांग रोनो हेमन्त कुमार जमातिया

0: अब तो सैमंग अब कैसा आज नी लामा नि कक सै दंग
1: दाइन
0: सावनी नि कक दक रे फंका हाम हाम बाय फरी जिन साल दंग दिनी अकताल जुगो कम्प्यूटर जुगो ते बेलाइना थकी जाकमी जुगो थकीना गबांग जुगो जिन बहाके सियान ग्रं चीनी रं सरंगमानी रकन सामगो थेबाई माने आबनो सैमानी दंग हामियानी बो आमसुकनो बांगी दंग इंकई आउन बिशिंगो जिन सियान ग्रंगी दंगनानी चीनी रं सरंगमानी न सुनानी बुमंग सिना रंगमाबायसिमिया पढ़ना रंगमाबाई सिमिया फियाबा जिन जे सिमूंग मानमानी रकन ककथुम ककतमा खानामानी नोकमानी रकन गाहाम हामिया फेलामूंग सैमानी ते जे कक बथमा चीनी दाखुक बसाय खानारगा तेसा सकनी हामक्राई निबागै हंकाय अ रंग सरंग जिन सकनी हामक्राई सकन भाई के हामक्राई खाइनाय जिन आजिमानी तो तंगना आबो फियाबा सा खामक्राय आबो आजिमुं सिमिया जिन नक नुखुंग ते संसार जे गाहाम हामिया न नुगैनाय बुजिनाय रोगथारनानै आबनो आबनि कक नो जों दिनै सालाय दङ फारि हायनोहाय गोरोंनाय हेलो फुंकाहाम ननो बलाम सगो साग्रादि रं सरंगमानी न सालाय दंग हाइपन दिनी अ जराव जों दं तंगमानी जराव रं सरंगमानी आबो साखन भाइके हामक्राय ख्लायने आबो बसाय दंग दा आओ आबो हाइन त नि छैन दखाइबेलाय हामबाय आओ खनाय दङ तक तेबुक सं नरगबो सालकमा पान्दा चिनि कक बथमा तिनि हायुं रं सरं साल नतैन सालाय दङ फियाबा अकताल जराव कम्प्युटर नि जुग जों रं सरं मानि आबो बसुक जरा तै थांनानि नां आबो सालाय दङ हेलो हेलो

0: हेलो,
1: आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उसने आपकी कॉल को होल्ड पर रखा है। कृपया।
0: करंगी मा यांगी तोंग छंग के बो करंग ना नाइ तोंग फिया बा होल खलाई तोन जा खनी छाओ खा छंगो। हेलो
1: आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उसने आपकी कॉल को होल्ड
0: साइमली
1: पर
0: आपो
1: रखा है।
0: खरोक
1: कृपया
0: सादा
1: लाइन पर
0: लाई
1: बने
0: तुमका
1: रहे। द पर्सन यू आर स्पीकिंग विद

0: अबखैतो स्मार्टफोन स्मार्टफोन निबागे हाइन खता काय
1: ताबखैतो न न न सिगनि और कोखि चमका बा न सिगनि कोखि चमका मो अजुगुंगा कंप्यूटर सुखि खता
0: आओ हेबा सोशल मीडिया जों ताबु फेसबुक हे फेसबुक
1: ताबु आं छावन आजे दुर्गोसन आंका
0: जोमी दाखुक अबनी खामपार बसाय खाजे जो

हिल्स दंग बैवा लाइमा दंग बै दुखुमा लाइमा दंग सं लाइमा दंग चाल गर हेमान मूसाबो कर फेयाबा आं रिल बुनी रिल्स नाइ के जराया खर जरानो लाइ आं टाम खाई दं आं टाम मानखा अब बो नायना नांनाय ओंखाय जों रिल्स नायै जिनै जरानो हाय नो एरें एरें लाइरिया उइ जों आबो हाय नायनो जे नायमानि बिसिंते आनि सिमुं आनि नलेज तेबनो तेबु गोबां उंगो आनि बखातेबो गुवार उंगो आनि सिमुं तेबो बांगो आबो हाय कन्टेन्ट आबो हाय भिडिअस आबो हाय निउस रकनो एबा ककतमा रकनो जों नायनो जतन कहम करूँ तो अंबाई दी ताकू ते बखोक संग नरक नो हाय नो हाय कोक दुख ते अंबाई करेंगे अनो लोगे रमाने बागे हम बाया फरो

उनका अटल पेंशन योजना अब जे बड़ो हाफांग से बोखलाया तांगी चाओ बानिया खलाई चाओ बरकनी बागे बेलाय के नांगमानी अबनो खलाई का हंकाय लांगमानी पाइथक जराव नों सामुं खलाया फानो ताल ब्रुम ब्रुम रां फाय थंनाय अबनि बागे असुख बिसि जरा नों रांग्रेना नांनाय हिनि बकरै एबा असुख बिसि जरा नों रां माननाय हिनि बकरै हंकाय जों तेबो खना लायेनो दामके दाबुक दांसार जाबमुं गजार खनाय नालायना

गावनि बागै एकाउन्ट अपेनिं फर्म नाना नांनाय दि केवाइसि खालायनो नांनाय आधार कार्ड होना नांनाय पेन कार्ड होना नांनाय ओंखाय रां रोमानि पे इन स्लिप अमाब रोजाबनाय ओंखाय अबनो गाहाम खे जों सायमोनना होंखे पोस्ट अफिसाव थाङैनो आरोनि बर' रक्न जे आदं दङ बर' रक्न सोंगै आं अबनति खालायनो मोजोंगो होनो सागा होंखे बर' अबन गाहाम खालायै बुजगोरिनाय गायताय लगे लगे जिनि लां मानि गायसा सेफटि एबा दामनि सानाय जों लां मावो किसा रागै दङै माननाय क्रिया खालायै दामखे जों माइके रां न रिउै खाति खांगाय जिनि जरा हामिया जे फ्रुफायो आफ्रु जों अबन सामग फनाङै मानो एबा जेराय दाबुक जे बसा 18 इयर्स इयाखौ बिनि मुङै जों माइके रिउै तनिखा हानगाय खाति वै तनखांगाय ब जेफ्रु रों न कतरो थाङि रों सेरोंना थाङो बन जों जुबावै मानो ओ रांनि बिसिंथै

आसुजरा जों खोनालायखा अरुण्य बर्मानि खरांग' रोजाबमुं हायनो हाय तेतांसा रोजाबमुं फायसिंन जों थांलायनो दाबुकनि रोजाबमुं जों सबन सबनि रोजाबमुं खोनायमा नायगोना हाथी पारमिता रियांनि खरांग' अरोजाबमुं खोनालायनो

0: बात कसा फायक नैन फाय खुलूम पाय कहनी गई सिनेमे मलांगसे नाइसी तो खाना सिनेमा ले आदा हिने हिनो आं आपनी नि स्टूडेंट न आनी बु मुंगुते हिप्रसे उ फुइला जे बसर आं चाकरे मानमानी हाममानी फरंगनाय हिसाबे अफ्रु बुआनी स्टूडेंट तं मानी गई उलो हंगाइते मजमा उलांग बिनि इंकर पगई थांगाता पगई थांगा हंगाय अफ्रु गई बसाका हंगाय आं सिनेमा खाता हंगाय अमहाय गोबां मानांगौ बिसिन कायने उलब आं कायसा जागाव चानानि थांगौ चाना थांगाय नायबा कुसु सेंकारि बे माटेरि बे बरक कायसा आचुक जाक कुसु किरि सर सर हंगा मोननोगौ म म बुति बरक बं खाहिनि से किरि सर सर आं तं अलखे बसात कासा कक साउ काम दा तं हनि हंगाय आं मन नायसिगै मा तं सा बं का आं स्टुडेन्ट न आपनि स्टुडेन्ट तं मानि हंगाय ब बरक न सु आंखे बिनि चेहरा नगे सियां किरी तंखा मैंने जे रखम चीनी बड़ रंग रग नुंगमानी सिनेमा रग भिलेन नि जे रखम चेहरा नुंगमान अमहाय अमहाय टाइप नि चेहरा सेंकारी र कलक कलक अमहाय चामदारी र कलक कलक बखनाय र कलक कलक नुगै कुसु किरी तंमानी हिंगाय बसे सौ पखे बोले उमा बना किरी तमन बसे होला एकदम कयखनि कक सकाय ओ आं आपनि नि स्टुडेन्ट सान सिनेमा लिया दाहनि अमहाय र तंक बनो अ प्रोफेशनल तंखा हंगाय प्रत्येक बसन अंखरि थांगो फरंगनाय र गे जों जतन सिनेमाया पगै थाङो जों त ताबो उमर बांग्रो र गे बरक त चाराय बिले बरक जोंनि जोंखौनो पगिया जोंनि चेहरानो पगिया पगिया गे जों खायबा बेस बेस हाजार हाजार कत अंखरै थाङा अमहाय पगै थाङो अबन कायसा जे टिचार्सनि लाइफ अबन कायसा आनबागै बेलाय माने मेमरेबल जागौता अमहाय गाय जों सिनेया किन्तु बरक थिंनो मैथ' खालायाखनि फाय सिनेगयाखनि खुलुमै कक सापाय माने
1: जेफ्रो आफाके खुलुमै कक सापाय अब
0: आफ्रु गाय माने बुमतै फिलिं एकटा माने बसा जे रकम फायकनि बुमा बुफानो फाय खुलुमै कक सापाय माय अमहाय हाय गाय मातौता
1: आफाय
0: अमहाय फिलिं गोता
1: अबनो जतन से कतर
0: मान अबनो तं थं माने
1: माने नों जे फोरोंनाय नानि हनैनाय जे टीचिं लाइनआव फायनानि हनैनाय
0: चारायफ्रुनि सिमिन बयानो सोंगांगाय नों तरै तामंनाय अब मतैर खुग दागि तुइदे आं खासेति सियाफ्रुन सिमिन ओ तामहिनाय दस बसर कायासिनि न आं फोरोंनाय नाय हिनै अब साजाक साजाकते हिंगु हिंगामनिते ब आं जखन प्राइमारि स्कुल फरिफ्रु आनि ताबखै त गोरैखा गाय आनो जे फोरोंनाय अब कैसानि माने बिन आनि प्राइमारि स्कूल आनी खरक सब आइडियल तं मानता आइडल तं माने हंगाय फोरोंनाय बन नुखा एकदम सिम्पल भाबे टाइमली फाय स्कूल फाय सपाय बस साइचुं न अफ्रुगो टीचर अफ्रुर गत टीचर खूब कमला साइचुं न फाय सपाय साल बुरुम बुरुम फायो लामा हाक्साल हिमै फायो सैमान अनेक हाक्साल बिनि ताइसे अफ्रुनो गत चिं बचार रकबां म बुस गलाय वा बलायनाय वालायो बुलायनाय बुलायलायो चेकलांनाय चेकलांलायो हायफानसे ओ टीचारनो नुखा जलि जागिया आसो बिनि पेसेन्स बिनि मध्ये जे क्वालिटि नुखा बनो कायसान नुगै आं मा वानसुखाबा म टीचारखै माने बहायतै गोरै हिनि किन्तु आनि माने खुब उंक आं बनो खुब एकटा बिसि बसर मानलि आं प्राइमारि स्कुल पाइ फायगा আপন তাবো মৈতমা নাঙানি স্কুল ও টিচারনি কম ন একবারে যতন সমান কাই হাম যাবো যতন সমান কাই নাই খুব পেসেন্স তোমহাই
1: তিনি কথার ছাল নিনি ফরংনাইনি মঙ্গ
0: ফরংনাইনি বুমংখাই নগেন্দ্র দেব বর্মা তোমানি
1: বেলাই কাহাম ফরংনাই তোমানি আজ
0: প্রাইমারি নি
1: আরন চিমিন বখা বাসা খা যে
0: ও সানন গয়াং বেলাই খাইন মানে फोरोंनाय नाम मुसंखाता
1: फोरोंनाय नानि ताबुंनि ताबुंनि जराव मेडाम खरकसा आइडियल टीचार ओं थानि ताम ताम तंना नां होनै नों
0: खरकसा टीचार काहाम टीचार गुड टीचार ओं ना थांगा हांकैन प्रथम तत बिनि सब्जेक्ट नलेज क्लियर ओं ना नांगान बजेटा पुरि रेन अबनति बिनि एकदम बेसिक कन्सेप्ट क्लियर ओं ना नांगान अब कैसा थांगा ताई खरकसा टीचार ओंगे ताबु फलो खलाय जागौ स्टुडेन्ट बाय हिंगे बिनि कक सामुं तंमुं चामुं अब्रग ब फलो खालायजांना मत अमहाय स्टुडेन्ट बाय जाते फलो खालायजांना मत अमहाय एंना नांगानो गांगाय आदिगे बसों टीचार ग ख्याल नारंगना नांगोता जेनि तंमुं चामुं कक सामुं कानमुं चोममुं थुं पाइसग्रि बय ब टीचार बाहेके आहायंखा अमते हिंजा गया तेखै जों तंना नांगोता तंथानि कक सातानि যত দিন

0: किन ओंखाय तै त जत चेरा रंग त जों समान खै नाय ना नांगौ अजगाव कोनो उंखौ नाय जे ब अमतै फेमिलिन बरक हिंगे बनो कहाम फेमिलिन हिंगे बनो बिसि अयलें खाइनानि ते गोरि हिंगे बनो ख्याल खाय आमति चिनि थानि जत स्टुडेन्ट समान ब परा मानथुन मानियाथुन ब गोनां नंनि बरकथुन गोरै नंनि बरकथुन जतन चिन मखल जों समान खाय नायनो नांगौ औ गोरैनाबो जों सोंना नांगौ नि सरि काहाम दे नों काहाम खुनो जाथं परारक बुजा बुजि बरनो सेतैबो जों स्पेसियल केयार होना नांगौ
1: कैसा गनांग नक नि बरक तो बनि तो नगो फरेंनाय बो तंगै मा
0: फरेंनाय बो तंग
1: आ गरै नक खुंनि गांके तो बन तो केब फरेंनाय बो तंगला
0: फरेंनाय तं गरै नक रब
1: स्कुल जे फरेंजा माने आबोन बनि बुजि
0: बरंग जों स्पेशल केयार इन नाउ बरक जते कॉन्फिडेंस फिरक मानना जा जे ना आनो हम जगान टीचर आनो आनि बुम खुइ नहुनु मुम खुइ नहुन जका चेरा रबलै तं थक जागो खातं खाजां जागौ ओंखे बरंग माजे मेदे नुहुनि सुंनानि कग्रक सुंनानि अमाहा हिंखे चेरारो बालाय चाजागौ ता
1: बरंगनि खुस खबर नाव
0: बरंगनि खुस खबर नाव
1: ताबुंनि जराव फोरोंनाय र बय बाय जे टेक्स बय बाय सिमिदा बरग आरो खाजागै दं ना ते आबुनि खारिबो तेबो तेबो सामुं बाय गदालै दं
0: ताबुंनि फोरोंमोंखाय ताबते बय गोरैखा बय बाय ताबुखाय तो मेन हिंखे तो ताम होनाय जों एक्सपिरियेन्सियल लर्निंग अपनासे बेसि ताबुंनि दिन एनइपि ट्वेन्टिओ अपनासे बेसि जोरै जागै दं जेकुनु सामुंनो जों ताम टेक्स बै हिंखाबो कन्टेन्ट बेस्ड अपना जों कन्टेन्ट बेस्ड खालायाव इसिनि सोरोंमानो लर्निं बाय डुयिं जों जेटा अब याग बाय खालायसे जेटा सामुं सोरोंमानि नतोबा अब कुनु एक्टिंनि माध्यमै फानो याखाय याखाय बा कुनु तामनाय एक्टिभिटि बेस्ड फानो अमाहेखलाय सामुंनि बिसिंतै सोरोंमानि एक्सपिरियेन्स जोंनि निजिनि याग बाय ताबुरमनि मेथ प्रथम जों ताम सोरों एडिशन सबट्रेक्शन हा माल्टिप्लिकेशन डिविशन अब डिविशन दं अफरक सोरोंनांगै रमदि जारायना फोरोंखा बय गय तंमा हाय फोर डिवाइडेड बाय टू इकुवेल टू टू अमाहेंगे अबन सायमाखा बनो जुदि कैसा फालजाखनाय इंख नगद थाङै म मानै चकलेट नों पाइदि नङा जगाव चकलेट कायब्रै पाइनो हादि कायब्रैनि दामुखा कुरि टाका कुरि टाकाखाय न खरं नों बिसिं बाग चालायदि अमाहेखाय खरं नों बिसिं बाग चालायखाखाय अब आबन दाम त कुरि टाका कुरि टाका हांखाखाय कलसा बोसोलायखा कलसा ब खबा अजगा न तामखा ब अजगा अमुखे तलाङै फोरोंखाखाय ए अबन सोखां खालायरिबै उलो फाय फोरोंखाय बबन बुजिना जे ए अबन अ डिभिसन अफ सिनि प्रेक्टिकेल लाइफ अजगा से सामुं नाङो याखाय डाइरेक्ट थां फोरोंखा हांखाय अब ब जगा सामुं नां बनि जि फ्युचार दय सायमान गला
1: प्रेक्टिकल बाय थिउरी न गोरोंसा खालायनाय फोरोंखांखांके आफ्रोनो बरक
0: चारारक बुजिउइ मानोता
1: आफ्रोनो बरक काहामके सोरोंङै मानो बा बरक आबो एप्लाइबो खालायबो बनै लांगाव
0: प्रेक्टिकल लाइफ एप्लाई खालायमो
1: एप्लाई खालायमानो खरकसा सोरोंनाय रंनि बरकनि जे चरित्र गठन मूल्यबोध खालायति साथानि फोरोंनाय रंनि बरंनि बबहाय सामु कतर दङ होननानै खाखालाय
0: ताबुरमदि खरकसा फोरोंनाय ब रोंनोगो सालब्रम ब्रम न लेवै थांखांखाय ओ सोरोंनाय रगबो नुगो बन लेवै फायमानि ओंखाय अब कैसा बरंनि गंगो सिनि टीचार से अमहायगे सुमगो जदि जो तो थुं पाइसगे टीचार न डाक्ति न रोंनोगो थांखांखाय सालब्रम ब्रम न ओंखाय बरक अ पांचुएलिटि पेपारबो बरंनि मध्ये फायनाय बरक खालायदि हिंखाय चेरा रं न आं आंनि ओसोग बसनि एक्सपिरियेन्स नुखा खालायदि हिमै बरक बिसि खालाया बरक नुगैसे बिसि सोरोंगौ बरकनि तमुं चामुं नुगैसे बिसि फल' खालायो खालायदि हिन्दाखि जामु बिसि खालायना नायया गामहायखाय जों निजिन टीचारों जों कैसा रल मडेल नोङै बरंनि थानि बरंनि केरेक्टर बिल्डिंग अब कैसा मेन फैक्टर जों निजी से रोल मॉडल नांगौ फोरोंनाय रक
1: फोरोंनाय रक कैसा रोल मॉडल खांखनो सोरोंनाय रक
0: सोरोंनाय रक
1: आबुनो न सोरोंगै कॉपि खालायमान कॉपि खालाय खरकसा फोरोंनाय बाहायके खरकसा सोरोंनायनि बनि जे चासामु

0: खाय सोलोंनाय रोंनो खेत्रखाय अब थिक आस एप्लाय खायमानो अब अनेक वाइड नलेज माने तामहिनाय पुरु वर्ल्ड नि नलेज कलेक्शन खायमानो हांगे अजागो माने रं राइट अबनि कैसे बेपार दं हांगे चारेर इन्टारनेट एक्सेस खायखांके अन्यदिगे साइट अफ टर्न खायनानै पसिबिलिटी दं हांगे टीचारनि बागैले अब कैसा माने कैसा मेन टुल्स नि मान कैसा माने काहामसि बेनो टीचारनि बागैखाय अब फोरोंतानि हांगे स्टुडेन्टनि खेत्रे हांगे अब थिक आसे अब दरकार दं बिनि अपरचुनिटि बतं बिनि ते डार्क साइड बतं
1: टेक्नोलॉजी एडुकेशन काहम तं फिया बनि
0: चैलेंजिंग बतं तामुंगे हिंगे जो तो जगा तो इंटरनेट फैसिलिटी करी जो तो चराय इंटरनेट फैसिलिटी ता वो सुजुक मानिया खो कैसा शहर ने चराय जटा इंटरनेट बा एक्सेस खाइ मानो कैसा गुरुई डेली सामुंग तांग चानायनि बसा बे बरंनि नगत इंटरनेट फैसिलिटी करी हंगाय ओ कैसा शहर बाय कैसा ग्राम ने करी नि नग ने होयतो बा करी बे गनान बिस कैसा कैसा डिफरेंस सिंग थंगो फैसिलिटी ओ
1: अमन कैसा जतन छ पतो केबेंग मु ताबुनि जराबो मैडम जी सरंगनाय रो बय बिजा पोरिना फाइसिम बरंनि आसक्ते आगिन हाय नुक जागिया खरकसा नों खरकसा फोरोंनाय अमन बायके नु
0: आनि मकल हंगाय बयनि कुनु सब्सटिट्युट दंया ताबुनि चेरेर बय परिनानि बदला तामहिनाय विभिन्न इन्टारनेट बिषय परिनानि गखाय ठीक आसे इन्टारनेट इन्टारनेट बलते आं जेटा सामानि साइट विभिन्न साइट रमदे इन्टारनेटनि विभिन्न साइट थांगै परु हांगाय आ जागानि जे तंमानि इन्फर्मेसन अब जे पुरपुरि करेक्ट नै अब अंकै मेया किन्तु जदि बय डाउनलोड खाय परिखै अब आलादा बेपार हांगाय बय डाउनलोड खालाय परि आनसलाय आन मते खेत हार्ड कपि परि माने चाओ तांके बय डाउनलोड खाय परि खेसिनि बेसि समय स्क्रिन टंखे सिनि हेल्थ नेबे एकटा इशु नुक जांनाय मकलंग नेबे नुक जांनाय हांगाय जतन बागै ब अब सुबिदाय हांगाय हार्ड कपि बय परि मखाय ब जतनसलाय बेस्ट सिनि कन्सन्ट्रेसन ब बारि हब अब नै बय परिमा बागै सिनि कन्सन्ट्रेसन ब चेरेरनि बारिउ बय परि आंहा कन्सन्ट्रेसन कमि थाङ ताबु चेरेरन बय परिनानि तामिनानि अब अंक सिकरि खा कायसा नोट परिनाय हेके इन्टारनेट जे इन्फर्मेसन तंमानि बग अपना करेक्ट नै रमै नाहारो किन्तु इन्टारनेट जे तो अब त बरक ना अपलोड खलायो विभिन्न साइट जांनि बरंनि जानजानि ओपिनियन अपलोड खलायो के सब समय जे अब जे माने करेक्ट नङा न अब सब समय एंगिया
1: अब हाके माने गोबां मा भुल
0: सोरोंगोर
1: के जतन से काहाम गांके जतन से काहाम सोरोंनानि मेथड गांके बय परिनानि
0: बय अबनो तामने रेफरेंस हिसाबे नाय मानो इंटरनेट इन्फर्मेसन न नाय मानो नाय एकनि अब कम्पेयर खालायाकनि बय बायोल बुजिनानि बागै तेबो गोबां गोबां बरकनि रेफरेन्स नाय मानो मेन खेत जों बयनो फल' मा खालायो दा
1: जों बिजाब जेसो फरिनाय आसोंनि सिमुंनाय टेक्स्ट बय जेसो फरिनाय आसोंनो जि टपिक नो तेब क्लियार
0: बिनि कन्सेप्ट क्लियार
1: टेक्स्ट बय परि आंके बनि कन्सेप्ट क्लियारिं आंके जेसोपान नोट परि दै जेसोपान इन्टारनेट हायखौ वेबसाइट दखौ नों गुरि दि आसोंतबो बनि
0: क्लियार
1: फानो नोंनि थांमानो खरकसा सोरोंनायनि जासामुंनि उखलुगौ खरकसा फोरोंनाय टाइपनि बुमा बुफानि बिसिं बोसोखे गोरोंलायमुं गाहामुं नांगौ
0: अबथ' बेलायसे गोरोंलाय थांना नांगौ तामुङै हिंखे अ सोरोंनायनि बुमा बुफाथाय फोरोंनाय बरक फोरोंनाय बा बुमा बुफा हायन सेकेन्ड पेरेन्ट हिनि मानो फोरोंनाय रं न हिंखाय फार्स्ट पेरेन्ट खायत' जेटा बाय'लजिकेल पेरेन्ट खायत' निजिनि बुमा बुफा आबन परेखायनो फोरोंनाय हिंखाय अ बरंनि दुयदिगिनि न टार्गेट टाम अ फोरोंनाय न सोरोंनायनि बरंनि फ्यूचार दै वान सुकमु हिंखा अबन बागै निजिनि बिसिंनि थट्स आइडिया रक तामहिनानि कमिउनिकेसन बा अब टंलायना सिनां गोरोङै टंलायना नांगौ कक सालायमुं गोरोङै टंगिया हिंखाय अ चेरायनि बागै

0: आमी थांगो अजागो सोरोंनाय न' बाहायखे खाबा सोरैनाय गाहाम रेजाल्ट गारिमोन
1: जोंनि बमा बुफारावबो खिसा वान सोंनानाव जोंनि पैलानि नायमुंखायखा खायसा गाहाम जाराय हिसाबे बन कतर कलखैति सानानि हे ताबुंनि दिनावबो खायसा आनहेल्दि कम्पिटिसन थांगा जे मार्क्स साबुनि सोलाय साबुन मार्क्स जतनि दिन सेसत थाङै जों नुगजागो मार्क्सनि सोलाय खायसा बर' गाहामसे जोंनि समाज बेलाय खेलाय तामजा जत बायन हामजागो गाय पैला सेकां न कैसा चेराय कहाम आबोनि उलो से मार्क्स गे मार्क्स दि सानानि ब्यापार जत बरंनि तो केपेबिलिटी समानिया लर्निंग एबिलिटी जत बरंनि समानिया काब केबोनि आइकिउ कम काब केबोनि बेसिक बा केबोनि अनेक समय बिनि तामिने एनवायरमेन्टनि कारणबो उङिमाय आङै थाङो गाजाखौ जों बरंनो तामखायनो नां मोटिवेट खायनो नाङो अजागाव बरंनो चाब्रनाया रनानै नों उंकनै नाङै आकक सानाया जेसो माखाय अनेक गाहाम खायगा नों तेबो माननाय नैबो अमहायखे चेरायनो एनकारेज खालायनो नांगौ मोटिभेट खायनो नांगौ
0: मोटिभेट गाहाम खालायनो नांगौ बनो खरगसा सराय गाहाम खालायसे थिसाना नांगौ खरगसा सराय गाहाम खांखे ब अटोमेटिकलि बिनि मार्कबो गाहाम फायनाय जत फायसिं बिनो गाहाम मोननाय खरगसा फोरोंनाय ब बिजाबो नायै सिमि फोरोंगिया खरगसा सोलोंनायनि इमांनो मुक्तां खालायनानै बनि थिनांनो थिथि खालायनानै बागै नांखुंमानि यापिरि रम' दिनैनि फोरोंनाय रंनि सालो आलायदा पान्दाव' नांखुंमानि कक फाय साफायमानि बागैनै मेडमनो बेलाय बेलायखोनो हामबाय दाय खाखा हामयाफोरो जत फोरोंनाय रंनो दिनैनि अ फोरोंनाय रंनि सालो खाखा हामताय हामबाय याफोरो जतनो खुलुमका
1: खुलुमका

फोरोंनाय रोगनि सालनो रोगै कक सालाय मुं पान्दा खोनार जाखा ताबुक खोनाबायदि ताबु सुगजारा दिनैनि कक बरक कक तमानि कक बखरक मन्त्री बखरक नरेन्द्र मोदी गुजरात ताइ महाराष्ट्र व जुदा जुदा सामुं बतांग मान्जाकै दङ गुजरातनि भदोदराव खक थामचि बा साय रजाकनिब गोबां रांमारिनि जुदा जुदा हामग्राय दांबोतांनि हलंथं आचुग्रेखा चेंगि रेखा ताइ बसंनि बागै याफारखा यां महाराष्ट्रनि मुम्बाइयाव मन्त्री बखरक मोचां मोदी ग्लोबाल फिनटेक फेस्ट नैसाय नैथि दग्न चेंगैरै दङ ताइ आरो कक नारुगै दङ कासुमुं नायमोथां मन्त्री राजनाथ सिं सालथाम रमै श्रीलंका बेरायना बागै दिनै थाङानो एडिसि भिलेज कमिटि रोंमात चंमारिनि चंबलाय याचाकमुं दिनै पायानो अ चंबलाय रक्न खोना आमजग नायजागानो दिनै हायुं आयखर रोंसाल जुदा जुदा सामुं बोतांनि बिसिंतै दिनै असालन पालायजागै दङ भारतनि नबारदैबार नायखुं साख्लायखा बोसखां सालनैयो भारतनि सालसि सालखा आमचेयो गोबां वाथै फायिमानो यां बोसखां दामनै जिब्रैयो उनकुटि सालसि धलाय गुमति ताइ सालग्रा हांखर आमचै रग फेरांकगै मजमु गोबां वाथै फायिमानो होनै साख्लायखा नबारदैबार नायखुं

0: हाय प्रिंस, अकेले हो? शादी नहीं की? प्यार भी नहीं?
1: इन्होंने अभी तक प्यार भी नहीं किया।

0: शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए।
1: हमरा रुचि हम झूमे सांसातेर आशुरे एबारे जे गानटी शुनबो आ ई गानटी आशा भोसलेर कंठे।

0: नाक तो बिल्कुल बाप जैसा है।
1: अरे बच्चा मेरा भी नहीं है भाई।
2: अरे बच्चा किसी का भी हो, हमें क्या करना, हमें तो अपना हक मिलना चाहिए। खोल के बैठ जा बहना ढोलक।

0: लाया है हमारे सवाल का जवाब दो ना, बगैर माँ बाप का बच्चा कहाँ से लाए बोलो ना।
1: मंदिर पहुंचा,
2: हाँ जी।
1: एक बच्चा देखा,
2: हाँ जी।
1: ना कोई आगे,
2: हाँ जी।
1: ना कोई पीछे,
2: हाँ जी।
1: मैं तरस में आके,
2: हाँ जी।
1: ले चला उठा के,
2: हाँ जी।
1: के माँ को दे दूं,
2: हाँ जी।
1: मंदिर में रख दूं,
2: हाँ जी।
1: पंडे ने देखा,
2: हाँ जी।
1: वो जालिम समझा,
2: हाँ जी।
1: ये पाप है मेरा,
2: हाँ जी।
1: बस मुझको घेरा,
2: हाँ जी।
1: फिर पुलिस आई,
2: हाँ जी।
1: दी लाख भाई,
2: हाँ जी।
1: वो एक न माना,
2: हाँ जी।
1: पड़ गया ले जाना,
2: हाँ जी।
1: सोचा ले जाकर,
2: हाँ जी।
1: फेंकूंगा बाहर,
2: हाँ जी।
1: सौ जतन लगाया,
2: हाँ जी।
1: कोई काम न आया,
2: हाँ जी।
1: सड़कों पर बेचा,
2: हाँ जी।
1: गाड़ी में फेंका,
2: हाँ जी।
1: बन गया ये बंदा,
2: हाँ जी।
1: इस गले का फंदा,
2: हाँ जी।
1: मैं फिर भी टाला,
2: हाँ जी।
1: कचरे में डाला,
2: हाँ जी।
1: फिर बारिश आई, अंधियारी छाई, बिजली जब कड़की, मेरी छाती धड़की, एक तीर सा लगा, मैं वापस भागा।

0: ताली ताक झम ताक ताली ताक झम ताक झाला आंब ताक झग ताक ताडी गेन ताक नाक ताक झम ताक नाक नाक झम ताक नाक नाक झम ताक नाक नाक झम तारी ता झग तारी ता झन झाले कोको तारी ताक तारी गेन ताक झम तारी ता झग तारी ता झन झाले कोको तारी ताक तारी गेन झम तारी झग तारी ताक नाक ताक ताक झन ताक झम ताक झन ताक झम तारी झग तारी झाले झाले कोको ताक झन ताक झम ताक झन ताक ताक दंग कर दम ताक झग कर दम ताक झग कर दम
1: पाखा नारंगी की पाखा पाता चूचा रंगी जाला जैसे मस्त शराबी हालत रंग बिरंगी।

पीछे नहीं हटूंगा, वही मिला को रख डालूंगा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह मेरी मदद कर। अल्लाह मैं बुद्धि को छोड़ूंगा नहीं, मैं अल्लाह।

इश्क मुझको नहीं वहशत ही सही, इश्क मुझको नहीं वहशत ही सही, मेरी वहशत तेरी शोहरत ही सही। हम भी दुश्मन तो नहीं हैं अपने, गैर को तुझसे मोहब्बत ही सही।

0: समाचार संध्या के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत की फिनटेक यात्रा नई ऊंचाइयों पर पहुंच रही है। इसमें नवाचार और समावेशन को केंद्र में रखा गया है। मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने गुजरात में 35,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने कहा, चिप से लेकर जहाजों तक भारत विनिर्माण के एक नए भविष्य का निर्माण कर रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 3 दिन के श्रीलंका दौरे पर कोलंबो पहुंचे। यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के बीच रक्षा और समुद्री सहयोग को और मजबूत करना है। रूस ने यूक्रेन संघर्ष को खत्म करने के भारत के शांति प्रयासों का समर्थन किया है। कहा, इस मुद्दे पर रूस का रुख भारत जैसा। बिहार, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, झारखंड, उड़ीसा और पूर्वोत्तर राज्यों में कल मूसलाधार बारिश की आशंका। और अहमदाबाद में विश्व पैरा तीरंदाजी में आज भारत ने 2 स्वर्ण सहित कुल 5 पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ने अपनी फिनटेक यात्रा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। इसमें नवाचार और वित्तीय समावेशन को सबसे अधिक महत्व दिया जा रहा है। मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में उन्होंने कहा कि नई प्रौद्योगिकियां वित्तीय क्षेत्र में नई संभावनाएं खोल रही हैं।
1: 21वीं सदी का दूसरा क्वार्टर हमारे लिए और भी नई संभावनाओं लेकर आया है। एजेंटिक AI, टोकनाइजेशन, क्वांटम, ऐसी टेक्नोलॉजीज फाइनेंशियल सेक्टर में नई संभावनाओं के द्वार खोल रही है। अब हमारे सामने चुनौती है, इन संभावनाओं को वास्तविक इम्पैक्ट में कैसे बदले।
0: श्री मोदी ने कहा कि भारत साइबर सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रहा है।
1: हमें भारत में साइबर सिक्योरिटी को टॉप नॉच बनाना है। हमारी इंडस्ट्री के पास अपने इथिकल डेटा प्रोटेक्शन स्टैंडर्ड्स होने चाहिए। हमें एक मजबूत फिनटेक रेगुलेटर इंडस्ट्री इनोवेशन इकोसिस्टम बनाना है और हमारे पास एक फिनटेक कंज्यूमर प्रोटेक्शन इंडेक्स होना चाहिए, जिसके आधार पर हर कंपनी की पारदर्शी रेटिंग हो सके।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले महीने UPI के 2400 करोड़ से अधिक लेन देन हुए। भारतीय UPI अब 11 देशों में संचालित हो रहा है। श्री मोदी ने UPI को फिनटेक क्षेत्र की बड़ी उपलब्धि बताया।
1: भारत की फिनटेक स्टोरी अद्भुत रही है और इसका एक बड़ा चैंपियन है हमारा UPI। मैंने पिछले साल भी इसकी चर्चा की थी, लेकिन ये इतनी बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन है

0: कि जब भी फिनटेक की चर्चा होगी तो वो यूपीआई के बिना अधूरी ही होगी।
1: श्री मोदी ने कहा कि भारत की 7.8% की विकास दर दुनिया को एक नया भरोसा दे रही है।
0: दुनिया कॉन्फ्लिक्ट्स और अनसर्टेनिटी के दौर से गुजर रही है। एनर्जी और कमोडिटीज की सप्लाई चेन्स पर दबाव है, ट्रेड को लेकर भी तनाव है और ये स्थितियां कई महीनों से बनी हुई है। इसमें भी अप्रैल से जून का क्वार्टर सबसे चैलेंजिंग रहा और इसमें भी जब भारत 7.8% से ग्रो करता है तो दुनिया को एक नया भरोसा मिलता है।
1: प्रधानमंत्री ने बताया कि 3 दशक के लंबे इंतजार के बाद जापान ने भारत की सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग को BBB+ से बढ़ाकर A- कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के वडोदरा में 35,000 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। श्री मोदी ने पश्चिमी क्षेत्र के लिए विशेष माल ढुलाई गलियारे के 3 प्रमुख खंडों को राष्ट्र को समर्पित किया। इसके साथ ही माल ढुलाई गलियारे के संचालन का मार्ग प्रशस्त हो गया है। श्री मोदी ने कहा कि ये गलियारा विकसित भारत की जीवन रेखा है।
0: ये 21वीं सदी के भारत के लिए बहुत ऐतिहासिक कार्य संपन्न हुआ है। ये डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर इस बात का साक्षी है कि बीते 12 साल में देश की काम करने की संस्कृति कैसे बदली है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत वैश्विक विनिर्माण केंद्र के रूप में उभर रहा है और अब अपनी उन्नत रेलगाड़ी और मेट्रो कोच का निर्माण कर रहा है।
0: साथियों, अब भारत चीप से लेकर शिप तक निर्माण की एक नई गाथा लिख रहा है, यानी पुर्जे भी हमारे और प्रोडक्ट भी हमारा। आत्मनिर्भरता की एक पूरी चेन भारत में ही बनेगी।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज 3 दिन की श्रीलंका यात्रा पर कोलंबो पहुंचे। रक्षा मंत्री रक्षा और समुद्री साझेदारी को मजबूत करने सहित कई मुद्दों पर बातचीत करेंगे। वे कोलंबो में भारतीय समुदाय से भी मुलाकात करेंगे। रक्षा मंत्री के साथ रक्षा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में 12 और 13 सितंबर को होने वाली ब्रिक्स बैठक के दौरान कई देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में बताया कि इन बैठकों के दौरान रूस यूक्रेन संघर्ष सहित कई मुद्दों पर चर्चा होगी। उन्होंने कहा कि भारत युद्ध समाप्त करने में किसी भी तरह मदद करने के लिए तैयार है। नेपाल में आई भीषण बाढ़ पर श्री जायसवाल ने कहा कि भारत ने तुरंत मदद पहुंचाई और राहत बचाव तथा पुनर्निर्माण के प्रयासों में आगे भी सहयोग जारी रखेगा। उन्होंने बताया कि अब तक 7 विमानों के जरिए 95 टन राहत सामग्री नेपाल भेजी जा चुकी है। उन्होंने बताया कि मारे गए कई भारतीय नागरिकों की पहचान अब तक नहीं हो पाई है।
5: मारे गए हमारे भारतीय नागरिक हैं, उनमें से कई लोग का पहचान नहीं हो पाया है। इस मामले में हम लोग उनके परिवारजन से बातचीत हमारी चल रही है और कई एक

0: इस मामलों में जो डीएनए की सैंपलिंग भी ली गई है, 275 लोग लापता हैं अभी, और ये जो हादसा हुआ है नेपाल में हुआ है, तो हम लोग इंतजार करते हैं कि किस प्रकार का वहां की सरकार, वहां के अधिकारी इस पर क्या खुलासा करते हैं।
1: श्री जायसवाल ने बताया कि भारत चीन सीमा मुद्दे पर लगातार संवाद कर रहे हैं। दोनों देशों के बीच वरिष्ठ सैन्य कमांडर स्तर की बैठक अरुणाचल प्रदेश के वाचा और चीन के दमाई में हुई। रूस ने यूक्रेन संघर्ष को समाप्त करने के लिए भारत के शांति प्रयासों का स्वागत किया है। रूस के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि इस मुद्दे पर रूस का रुख भारत जैसा ही है। रूस यूक्रेन संघर्ष का समाधान शांतिपूर्ण तरीके से चाहता है और इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए तैयार है। श्री पेस्कोव ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से अलग द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। श्री पुतिन प्रधानमंत्री मोदी को यूक्रेन के साथ चल रहे युद्ध की स्थिति की जानकारी भी दे सकते हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं।
2: ध्यान दें, आपकी मेहनत को राष्ट्रीय पहचान, पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने और नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने वालों को भारत सरकार का पशुपालन एवं डेयरी विभाग प्रदान करता है राष्ट्रीय सम्मान। आज ही नामांकन करें राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 के लिए। इस पुरस्कार के लिए 3 श्रेणियों में होता है चयन, सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति और सर्वश्रेष्ठ AI तकनीशियन। उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान। नामांकन की तिथि 10 अगस्त से 10 सितंबर 2026 तक, तो देर किस बात की। आज ही आवेदन करें www.awards.gov.in पर या संपर्क करें नजदीकी CSC केंद्र पर। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 पशुपालन एवं डेयरी विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: ये आकाशवाणी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 22 सितंबर को गुजरात के एकता नगर में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। एक रिपोर्ट।
3: आर्टिकल 370 को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म और भंगार को सर्वश्रेष्ठ नॉन फीचर फिल्म चुना गया है। वहीं रामनामी को सर्वश्रेष्ठ वृत्तचित्र का पुरस्कार दिया जाएगा। ब्रह्मयुगम के लिए मलयालम अभिनेता ममूटी और चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन को सर्वश्रेष्ठ मुख्य अभिनेता का पुरस्कार दिया जाएगा, जबकि यामी गौतम को आर्टिकल 370 के लिए सर्वश्रेष्ठ मुख्य अभिनेत्री का पुरस्कार दिया जाएगा। रणदीप हुड्डा को स्वतंत्र वीर सावरकर के लिए सर्वश्रेष्ठ नवोदित निर्देशक के लिए सम्मानित किया जाएगा। मंत्रालय ने बताया है कि राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के नॉन फीचर फिल्म वर्ग में पहली बार किसी संथाली फिल्म को सम्मानित किया जाएगा। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
1: भारतीय जनता पार्टी ने नशीले पदार्थों की समस्या से निपटने में कोई ठोस कदम न उठाने के लिए पंजाब सरकार की आलोचना करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत मान के इस्तीफे की मांग की है। नई दिल्ली में पार्टी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने आरोप लगाया कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के सामने ड्रग माफिया का पूरा तंत्र फल फूल रहा है।
4: गुलजार सिंह एक वीडियो बनाता है और वीडियो में वो 4 लोगों को इसका जिम्मेदार बताता है कि कैसे पंजाब में हर जगह नशीले पदार्थ युवाओं में बहुत आसानी से उपलब्ध हो जाता है और सरकार मूक दर्शक बनी रहती है, कार्रवाई नहीं करती।
1: बम्बई उच्च न्यायालय ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ टिप्पणी के मानहानि मामले में जारी समन को रद्द करने से इनकार कर दिया। याचिका में राहुल गांधी के खिलाफ कार्यवाही शुरू करने के मजिस्ट्रेट न्यायालय के आदेश को चुनौती दी गई थी। लद्दाख के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना को जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की अनुपस्थिति और अवकाश के दौरान जम्मू कश्मीर का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। राष्ट्रपति भवन की आधिकारिक विज्ञप्ति में ये जानकारी दी गई है। कृषि मंत्रालय ने बताया है कि 4 सितंबर तक देश में खरीफ फसलों का क्षेत्रफल 1,086 लाख हेक्टेयर से अधिक हो गया है। धान की खेती 421 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में और दालों की बुआई 117 लाख हेक्टेयर में हुई है। श्री अन्न और दरदरे अनाज की खेती 181 लाख हेक्टेयर से और तिलहन की खेती 191 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में किया गया है। ब्रिटेन ने भारत की कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना को मान्यता दे दी है। भारतीय निर्यातकों के लिए ये बड़ी राहत ब्रिटेन ने कार्बन सीमा समायोजन व्यवस्था के अंतर्गत दी है। इससे भारतीय निर्यातकों को एक ही कार्बन उत्सर्जन के लिए 2 बार शुल्क चुकाने से राहत मिलेगी। भारत सुरक्षित 6G वायरलेस नेटवर्क

विकास में तेजी लाने के लिए अमेरिका की अगुवाई वाली वैश्विक साझेदारी में शामिल हो गया है। अमेरिका ने बताया कि इस पहल में ब्रिटेन, जर्मनी और जापान तथा कुछ और देश भी शामिल हैं। इसका उद्देश्य वर्ष 2030 के दशक में 5G नेटवर्क की जगह 6G तकनीक आने से कई वर्ष पहले ही विभिन्न देशों की 6G रणनीतियों के बीच समन्वय स्थापित करना है। मौसम विभाग ने कल अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, बिहार, पश्चिम बंगाल के गंग क्षेत्र, झारखंड, नागालैंड और उड़ीसा में मूसलाधार बारिश की चेतावनी दी है। कल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु, पुदुचेरी और काराईकाल में भी बारिश की संभावना है। अहमदाबाद में विश्व पैरा तीरंदाजी श्रृंखला के तीसरे चरण में आज भारत ने 2 स्वर्ण सहित 5 पदक अपने नाम किए। तोमन कुमार और श्याम सुंदर स्वामी ने कंपाउंड टीम स्पर्धा में और हरविंदर सिंह तथा विजय सुंडी की रिकर्व जोड़ी ने पुरुष टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक हासिल किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत की फिनटेक यात्रा नई ऊंचाइयों पर पहुंच रही है, इसमें नवाचार और समावेशन को केंद्र में रखा गया है। प्रधानमंत्री ने गुजरात में 35,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने कहा, चिप से लेकर जहाजों तक भारत विनिर्माण के एक नए भविष्य का निर्माण कर रहा है। रूस ने यूक्रेन संघर्ष को खत्म करने के भारत के शांति प्रयासों का समर्थन किया, कहा इस मुद्दे पर रूस का रुख भारत जैसा। और अहमदाबाद में विश्व पैरा तीरंदाजी में आज भारत ने 2 स्वर्ण सहित कुल 5 पदक जीते। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: आज्ञाकारी है।
1: दुनिया का नारा जमे रहो, मंजिल का इशारा जमे रहो।
2: अरे क्या हुआ, इतनी टेंशन में क्यों है?
3: एग्जाम्स आ रहे हैं यार।
2: हाँ तो
3: इस बार भी टॉप करना है, 98% तो लाने ही है, फिर ये शहर की टॉप की कॉलेज में एडमिशन भी हो जाएगा और आगे की पूरी प्लानिंग सेट है।
2: अरे डोंट वरी, एग्जाम्स भी अच्छे जाएंगे और हम टॉप भी कर लेंगे, थोड़ा रिलैक्स हो जाओ। एग्जाम्स के डिप्रेशन में कोई लाइफ जीना भूल जाता है क्या? मेहनत दिल लगा के की है ना, तो उसका नतीजा भी अच्छा ही होगा। बस दिल पे हाथ रखो और बोलो ऑल इज वेल, ऑल इज वेल।